गई माँ बिका माली ले झुझू चीरा कहा मुहिले बिराए भानी कि मेरा दुई बाहू माता ठोकी दे जन्म प्लाटे रोनी तो करना दुरी तो धन को भतुआ।

0: जसई क्या नाम के वा
1: ब्रह्मा
0: को
1: करुणा
0: विजय के लिए बिनती गराए तसई ये ब्रह्मन जति हो शुभ शुभ सबई सुनी राम तू कछु बाकी छैन त साध सुनाइले समय हो गर्दछु आउला जब यो कली भगतमा प्राणी दुराचार भई गर्ने छन् सपा भने कर कामी कामी मा

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: Katha.
1: Very good. और ये कौन है?
2: ये मैं हूँ और मेरे पापा।
1: हाँ। आपके पापा चश्मा पहनते हैं?

और इच्छा जो माने हो मेलो मेलो मेलो सुबह छोटो आल्ला छोटो आल्ला कृष्ण बाउसे और बाउसे सुजाता बिउले सरस्वती ने बिउले उम्बोई बाट मालिंगा ल्याए हाम्रो मितले सा आजको

ठाम हरे राम राम लाई लाई पानी चाहे चिरुआई आता मालूम की लाई माथा मा लाऊ की बाबरी बनी बिरुआ।

देवरानी मिलाय बोलावा ने पनी देवर वंशाथमा जेठानी दिलाय बोलावा ने पनी बालोला काथमा घास काटनी कटराय सिला के बाटराय सिला ग्रजी घर मेरो जान गाँव शील के मूर्खा पर भरे अब गिरे।

नमस्कार रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम बैंड में थप्लो 7 MHz बाट हो मति प्रसाद सापकोट आज विक्रम संवत 2083 साल आषाढ़ कृष्ण पक्ष सन 2026 जून 30 तारीख आषाढ़ 16 गते मंगलवार परेवा तिथि अब स्तुति करूं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पे भरी।

राजा नौश का इशारे दौलत ले परिपूर्ण होश पवन जाए नहीं परे का घरे मन राखुन सवाले दुर्योधन समान

धर्म कुमार कैसर्या श्री ब्रह्म ज्ञान याने विदुर कैसर्य ज्ञान हव शिशु जन्म मनुन बढ़ाले पने कृति उज्ज्वल श्रुत सहित।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: नमस्कार, मेरो बैकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने म झटक प्रसाद तिमल सिन्हा। म दुख केही दुई चारवटा भजन यसो गाउँ भनेर आएको यहाँसम्म। नमस्कार हजुर। जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देव, जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देव, गौरी माता पार्वती पिता महादेव। हरि हरि सदाई भरी भक्ति गरौं है, हरि हरि सदाई भरी भक्ति गरौं है, यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारौं है। आरती का जय राधे राम जी का जय, आरती का जय राधे राम जी का जय, आरती गरौं प्रभु आती मा तुमारे, यो लोको दुख छोड़ी जन्म सुधारे, यो लोको दुख छोड़ी जन्म सुधारे। जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देव, गौरी माता पार्वती पितै महादेव। हरि हरि सदाई भारी भक्ति गरौं है, हरि हरि सदाई भारी भक्ति गरौं है, श्री

जपौं हरिलाई कृष्ण जपौं हरिलाई एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैं भरिलाई एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैं भरिलाई।